नाना लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र चौजन पर भानो, लीलो ताहे मधुर पल जानो, बम मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहे, दुर्गम गाज जगत के जेते सुगम।

0: प्रेसको साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरूमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्.
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एन्ड अलवेज स्टे कनेक्टेड वेयर एभर यु आर.
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम.
3: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए.
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3.

जीवनयाता शीतलता की माँ जीवनयाता जीवित यही माँ अलेना पाँच छः गु जीवनया पला पला नहीं पुकी माँ

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पा छिगु जीवनया पला पला निपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन या तो शीतलता की मां, जीवन या तो जीवित यही मां, अलेना पां छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मां, किप्स एफएम, छेगु जीवन या सदाय मां पासा, किप्स 98.3 एफएम

0: तब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
4: Nepali Super Hits.

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: एक फूल झरे रे के भो एक फूल झरे रे के भो
2: नेपाली सुपरहिट्स

0: Every Tuesday and Friday, 1 PM, Wednesday, 10 PM.
1: Timile bhane ka sara dev phoera ma
2: Nepali super hits
0: only on Kipsa FM 98.3.
3: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे

0: 91.3 FM.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
2: दिल दीवाना, बिन सजना के।
1: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा
1: This is Kips 98.3 FM Your Companion
2: Are you ready for the big O?
3: This is Inbox
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

0: लो याद सुनो लो गीत बॉलीवुड गोल्डन हिट्स कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा
1: दिल दीवाना बिन सजना के
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो कीप्स एफएम मा

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत. जस्ट ट्युन इन रेडियो नयाँ जेनेरेसनको.
1: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स.
3: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi.
6: Best romantic Hindi song.
7: Best romantic Hindi song.
6: Best romantic Hindi songs. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m.
8: Pehla nasha, pehla khumar.
6: Station Kips FM 98.3 megahertz.

0: यो हो गिफ्ट्स 98.3 एफएम तपाई सँगको सहयात्रा
1: सौन्दर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम ब्युटी हेल्थ एन्ड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी
3: बेस्ट रोमांटिक हिंट

0: प्रेसको साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरूमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: सुनौलो याद, सुनौलो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स। कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा। आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे, सोमबार र शुक्रबार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकै रेडियो कीप्स एफएम मा।

0: बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
1: यू कैन डांस
2: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
3: जस्ट ट्यून इन
2: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.

0: We'll be right back. You are listening to KIPPS FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी
3: Best romantic Hindi song. Best romantic Hindi song. Best romantic Hindi song. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m. Station KIPPS FM 98.3 MHz.

0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा।
2: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
4: Does your computer UPS has no more backup time as before? Are you looking for battery replacement for your computer UPS? If yes, Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics has a solution for your problem. Protect your computer and hard disk drive from frequent power cuts with reliable, sealed, maintenance-free, long-life, SMF batteries. Also, we do exchange with your old batteries. Battery Shop, New Kathmandu Electric Electronics, Kulishwar, Kathmandu. Contact number 530-2678, 530-2678. 2678.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका तपाईं हाम्रो आफ्नै लोक कला र संस्कृति अब एकै थलोमा कार्यक्रम
6: भञ्जाङ चौतारी
5: प्रत्येक दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा
7: नेपाली पप गीतहरुको उतार चढाव कुन गीत कुन स्थानमा छ साथै नेपाली पप गीतहरुबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नु होला किप्स मोस्ट वान्टेड किप्स मोस्ट वान्टेड
8: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे
9: नेपाली संगीतिक क्षेत्रका गीत संगीतको साथमा रमाइला सेगमेन्ट्सहरू कार्यक्रम
10: म्युजिक मजा
9: प्रत्येक मंगलबार बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्र किप्स 98.3 एफएम मा

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा
1: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल Kips FM 98.3 MHz मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7

0: free internet ko matalin hos.
1: Our life is always on the happening. Kuru kuru.
0: Connect to my Worldlink and always stay connected wherever you are.
1: Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi.
2: Best romantic Hindi song.
3: Best romantic Hindi song.
2: Best romantic Hindi songs. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m.
4: Pehla nasha, pehla khumar.
2: Station Gifts FM 98.3 MHz.
4: Naya pyar hai, naya intezaar.
5: पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका तपाईं हाम्रो आफ्नै लोक कला र संस्कृति अब एकै थलोमा कार्यक्रम
6: भञ्जाङ चौतारी
5: प्रत्येक दिन दिउँसो 1 बजे देखि 2 बजे सम्म मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्जमा
7: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
8: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
7: गजल संसार
8: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
9: हर एक शनिवार दिन की 10 बजे
10: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
11: के
10: ई
11: पी
10: एस
2: किप्स 98.3 एफएम योर कम्पानियन
12: 3 इन 1
9: फ्रॉम द मूवी 2 रुपैया

0: life-changing quotes. पैसा दुईधारे तरवार हो, जसले भए पनि नभए पनि मानिसलाई चोट दिइरहन्छ। यो भनाइ हो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: best romantic Hindi song. Best romantic Hindi song. Best romantic Hindi song. Every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m. Pehla nasha, pehla khumar. Station Gifts FM 98.3 MHz. Naya pyar hai, naya
1: intezaar. केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 एफएम मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नु होला मात्र किप्स 98.3 एफएम मा
3: यु क्यान डान्स
4: You can sing. All you gotta do is
5: just tune in.
6: KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
7: The radio of new generation.
8: Amilai Sunhos, www.kipsfm.com Marfot. Just tune in. Radio Naya Generation Ko. Naya Generation Ko.
9: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
10: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
11: पुरै एक घंटा तीनवटा मुवीज का सुपरहिट गीतहरू
12: थ्री इन वन
13: एभ्री स्याटरडे 9 एएम एन्ड थर्सडे 6 पीएम
14: तिम्रो के मस्ती
15: किप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार
16: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
15: गजल संसार
16: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
17: हर एक शनिवार बिल्कुल 10 बजे

0: number 15.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए।
0: मूवी
2: पति पत्नी और वो दो।
0: सॉन्ग
2: हमने वही लगाया दिल।

0: every Tuesday 12 p.m. and Thursday 8 p.m.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गो

0: आइतबार र मंगलवार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं की रेडियो कीप्स एफएम मा।
1: Kips FM 98.3 MHz presents Top 20 Bollywood Countdown Show.

0: प्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हॉटस्पॉट हरुमा फ्री इंटरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज ऑलवेज ऑन जहां पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टू माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस?
3: सिंपल, say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: Namaskar and hardik swagat cha. Tapai sundai hunuhuncha Qs 98.3.